0: अच्छा अच्छा प्लास्टर
1: प्लास्टर हाँ हाँ
0: प्लास्टर नहीं प्लास्टर
1: प्लास्टर अरे
0: बी नहीं
1: ए ए ए